0: सतगुरु तेरे चौंध न्यारे ने, बंदी छोड़ सतगुरु तेरे चौंध न्यारे ने।
1: यह है सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का महान करनी नामा। एक बार सारी संग श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की महान कमाई का ध्यान करके प्यार आखू सतनाम श्री वाहिगुरु। इन शब्दों विचार समाप्ति वाल लेके आना। ढाडी दरबार प्रबंधकों वालों हुक्म सी के दस दे ढाडी जथे ने तीन दिन हाजरी भरनी, अज तीजा दिन सी। आप जी ने बेअंत मुहब्बत बख्शिश की, आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के चरणों में समुची संगत की चढ़ती कला वास्ते अरदास करता हाँ। तो संगत विच संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाला दे नगर रोडे तो भाई सरपंच जसवीर सिंह होरी बैठे, बहुत मुहब्बत करते ने, बहुत हार्ड वर्क करके मैं वेखदा हाँ कि बिल्कुल हर रोज गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में नमस्कार कर आते हैं ते ढाडी कला नूं बहुत प्यार करते हैं। तो संगत विच मेरे परम प्यारे छोटे वीर सरदार रणजीत सिंह होरी बैठे ने, बड़ी मुहब्बत आप जी ने बेअंत मुहब्बत बख्शिश की, भावें ना लैने मुनासिब नहीं पर फिर भी ढाडी कला प्रफुल्लित करने जिन्हों का योगदान है जिक्र करना बनता है। सब का बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जगदीश सिंह जी बटाला तीन दिन समुचे जथे ने साडे ढाडी जथे की बहुत वड्डी सेवा की। यह ढाडी जथा सी, यह तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने हाजरी भरवानी सी। मेरे नाल जिहड़ा असली जथा है उन्हां दा हले वीजा नहीं लग्या। ये दोनों मुंडे ढाडी ने जिहड़े एफ सपोर्ट रहिंदे ने, काम करदे ने, सरंगी मास्टर भाई हरदीप सिंह ये इत्थे ही रहिंदे ने। टाइमली असी आप जी की सेवा उत्ते हाजिर होए हां। बच्चियां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई गुरचरण सिंह बाठ पिंड रायपुर फराला, भाई कुलदीप सिंह जी इन्हां दा पिंड नगर पमाल, सरंगी मास्टर भाई हरदीप सिंह इन्हां दा नगर है तलवण। बहुत बहुत धन्यवाद, हाजिर हो गए ने क्योंकि पाठ बोध समागम है। गुरबाणी शुद्ध उचारण विश्राम किथे है। दमदमी टकसाल पंथ की श्रोमणी जथेबंदी गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो सीना बसीना चली आउंदी, बहुत वड्डा रुतबा है पंथ विच। उन्हां दे महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी मैंगल सिंह जी, ज्ञानी लखवीर सिंह साहब जी ने हुण आप जी नूं मुखातब होना है। गुरबाणी का शुद्ध उचारण अत्यंत जरूरी है। महापुरखां नूं सिंह साहब नूं जीव आ कहिंदा होया बेनती करना भाई साहब भाई मनदीप सिंह जी गुरु के वजीर हैड ग्रंथी साहब कि अगला प्रोग्राम आप जी नाल सांझा करन, दर्शन दी इन्नी सेवा प्रवान करो। आप जी की मुहब्बत का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परम प्यारे मित्र नगर जानपुर तो बैठे ने, मैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। फतेह प्रवान करो, सत्कार सहित आखो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: बहुत ही सत्कारयोग ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

की फतेह। परम सन्मान जो गुरु की साध जी निवास जी गुरु का खास रूप साध संगत जी दीन दुनिया दे रहबर चवर छत्र तख्त दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा सदका सतगुरां दे हजूर सुंदर दीवान सजे हन सजे दीवाना अंदर आप संगतां गुरु घर दे ढाडी सिंघां पासों गुरु का हर जस सरवण कीता है चल रही मर्यादा अनुसार गरीब नवाज जी ने कृपा कीती है समा होया पाठ गुरबाणी पाठ बोध समागम दा आओ साध संगत जी सुआसा नूं सफलियां करन हित मनचित बिरती नूं एकागर करदे होए सतगुरु जी दी पावन पवित्र बाणी दे नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करन दा यतन करिए। पिछले कल साध संगत जी 946 अंग तक सतगुरु जी की पावन बाणी आपां पढ़ी है वाहिगुरु 956 अंग तक 957 तों सतगुरु सच्चे पातशाह जी की कृपा रहमत दा सदका रामकली राग की दूसरी वार रामकली वार राग दे विच दो वारां हन एक वार असीं कल पढ़ी सी दी संपूर्णता ही कल हो गई सी अज दूसरी वार साध संगत जी रामकली राग दे विच जिहड़ी पंजवें पातशाह महाराज जीआं दी उचारण कीती हुई पावन बाणी है ओ साध संगत जी इत्थों अज प्रारंभता होनी है कल।

0: पौड़ी देवन हार दातार कित मुख सालाहिय जिस रखे कृपा तार रिजक समाहिय कोई न किस ही वस सभना एक तार पाले बालक वाग दे कै आपकार करदा अनद विनोद किछु न जानिए सर्वतार समरथ हौ तिस कुरबाणिए गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिनी हर रस भोगिया सलोक महला पंजवा भीड़ हो मोकलाई की तियन सब रखे कुटुंबे नाल
1: मोकलाई पाठ इकट्ठा ही करना जिदा ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है भीड़ हो मोकलाई की तियन सब रखे कुटुंबे नाल
0: कारज आप सवार सो प्रभ सदा सपाल प्रभ

0: सुंदर बचन तुम सुनो छबीली, फिर तैंडा मन साधारण। दुर्जन सेती ने हो रचायो, दस विखा मैं कारण। ऊणी नाही झूणी नाही, नाही किसै विहोणी। फिर छैल छबीला छड गवायो, दुरमत कर्म विहोणी। ना हो पुल्ली ना हो चुकी, ना मैं नाही दोसा। जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेसा।
1: पिछली पंक्ति जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है, ना हो भुली ना हो चुकी ना मैं, ये जड़ा पाठ कई बार नामे कट्ठा पढ़ जांदे है कई गुरमुख, नामे नहीं इनू इत्थे जिवें उच्चारण किया गया, ना मैं नाही दोसा। जित हो लाई तित हो लागी, तू सुन सच संदेसा।
0: साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा धारी।
1: बिंदियां तो रहत ही पाठ दोवें करने, साई सुहागण साई।
2: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
3: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब, स्कॉट रोड, सरी।
0: सच संदेशा साई।

का दुख लायण गुर का शब्द अमृत रस खायण नानक जिस मन वसै तिसके सब दुख मिटायण महला पंजवा हुकम उछलै हुकमे रहै हुकमे दुख सुख सम कर सहै।

पौड़ी जप तप संजम दया धर्म जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अगन आप सो नाम त्याए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए।

0: हाँ जी, ये पलटी है जिवें खट्टी है, उवें पप्पे नूं अगेतर ला के पलटी है। हाँ जी,
1: झुलै सो छत निरंजनी, मल तख्त बैठा गुरहटिया।
0: मल पाठ इथे कस के करना, जिवें उचारण आप जी ने सुनिया, झुलै भी पाठ कस के करना। झुलै सो छात निरंजनी, मल तख्त बैठा गुरहटी है।
1: करहे जे

हम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चांदनी भेजी, चंदवा भेजे। जिस दिन लाहौर विच ये तकरीब मनाई जा रही थी महाराजा साहब दी, ये चांदनी बन दी गई सिंघासन ते। महाराजा साहब सभा दे आए, निगाह चली गई चंदोए ते, चांदनी ते बड़ी खूबसूरत, हीरे जड़त मोती जड़त, नीलम दे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए जर्री दा कम। दास ने कई दफा इस चांदनी दे दर्शन किए ने होशे खाने, क्योंकि दास एक महीना हर साल हाजरी दरबार साहब भरदा गुरु रामदास जी महाराज के गुरपुरब को लेके दिवाली तक। किसी भगत सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह साहब का हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब, उन्होंने दरबार साहब च मेरे को प्रण ले लिया, ए महीना तुसी किधरे भी नहीं जाना, चाहे कुछ भी होवे या किधरे भी होवो, थोड़ी सेहत ठीक होगी, थोड़ा शरीर है वो तुसी गुरु रामदास के दर से हाजरी भरनी है, तो मैं हाजरी भर रहा हाँ। शौक नाल मैं इस चाननी दे बाकी साजो समान दे साल दे साल में दर्शन करदा सी, उचेचा होशा खाना खुलवा के। बदकिस्मत ये सन 84 दे चो जल के खाक हो गई, नहीं रही। ये चाननी जिस वक्त सिंघासन दे ऊपर बनी गई, महाराजा साहब देखदे ने देखदे ही रह गए। उस दिन अहलकारां नूं ये चाननी ये चंदोआ ये कदों बनाया है, अहलकार कहंदे ने महाराजा साहब बनाया नहीं है सी, ये ते निजाम हैदराबाद ने आपनों भेट भेजी है। ते सब तो कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दित्ती खड़े ने, थोड़ा जिहा सोची पै गए ते फिर कहण लगे उतारो इसनों उतारो। जिन्हां अहलकारां ने चाननी बनवाई सी उन्हां नूं ते कंबड़ी छिड़ गई, जिवें कुछ गलती हो गई, जिवें भुल हो गए। एक ने हिम्मत करके पूछ लिया, महाराजा साहब क्या ये चाननी थोड़ी शान दे छाया नहीं है, असी ते खूबसूरत ते कीमती जान के बन दित्ती सी, आप दा हुक्म उतारण दा उतार दे हां, क्या वाकई ये आप दी शान दे छाया नहीं है। पता है महाराजा साहब की कहने, इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है, इतनी मनमोहक है, ये दरबार साहब दे सिर ते चुलनी चाहिए, ये गुरु रामदास जी दे सिर दा चंदवा बनना चाहिए, मेरे सिर दा नहीं। उस वक्त भजवा दिती उतार के, घर विच ताकत वधदी जा रही है, साजो समान वधदा जा रहा है, पदार्थ वधदे जा रहे हैं, महाराजा साहब दे हिरदे विच परमात्मा दा प्रेम वधदा जा रहा है, राज सता वधदी जा रही है, गुरु भक्ति भी वधदी जा रही है। आम की होंदा है घर विच पदार्थ आने शुरू होए ते घर विचों रहत बैत निकलनी शुरू हो गई, धन चौखा आना शुरू हो गया, हिरदे च धर्म निकलना शुरू हो गया, घर पदार्थां नाल भर गया, हिरदा परमात्मा तो खाली हो गया, ओदी याद तो खाली हो गई, इस तरह ही होंदा है। राज सिंघासन ते बैठ के श्री कृष्ण दी आत्मा तो गीता दा फलसफा निकलदा है, राम दे रोम रोम दे चो मर्यादा निकलदी है, महाराजा रणजीत सिंह दे रोम रोम दे चो भक्ति निकलदी है, हरिश्चंद्र दे रोम रोम दे चो सच्चाई निकलदी है। ये देश धार्मिक राजियां दा देश सी, बदकिस्मत अधार्मिक लोगां दे हत्थ च आ गया। ओ देश विच ऐ जो पस्ती, खास करके इखलाकी पस्ती, हर पक्ष की जिहड़ी पस्ती असीं देखदे हां, भावें कोई कुछ आखे, मैं इसका एक ही कारण समझदा, धर्म निरपेक्ष सियासत राजनीति, धर्म चाहिदा व्यवहार विच ताकि व्यवहार विच बेईमानी ना होवे, धर्म चाहिदा परिवार विच ताकि परिवार विच कलकरेश ना होवे, रिश्तियां दे दराणा ना पैन, धर्म चाहिदा राजनीति विच ताकि राजनीति विच खोआ खाई ना होवे, जग है तशद्दत ते जुल्म ना होवे।

इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चाहे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहंदे ने। ए राजा होना चाहंदा है, ए राजा बनना चाहंदा है, ए महाराजा बनना चाहंदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे आज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ़ रहे है, धन कढ़ रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख विचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं त्रिपत हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। ए गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहे ने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनियां नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कमां दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया और मिल रहा है, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये त्रिपत नहीं हो सकया, फिर भी
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਰਜਾ ਸਕੇ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਸਾਗਰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਤੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ। ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ, ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਐ ਬੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਜੀ, ਪਹਾੜ ਸਾਗਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਖੋਜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਮਾਰ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰਨ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਮਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੇ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੇ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਧਾਤੂਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੈਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਨ ਮਿਲਿਆ, ਧਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰਜੇਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰੇਤ ਲਿਆਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਮਨ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅਦੁੱਤੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਦੀਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ, ਸਦੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਖੋਜ
रोज रोज करनी पड़ेगी और उतने चिर तक करनी पड़ेगी जितने चिर तक ये खजाना हथे नहीं आउंदा, ये दौलत हथ नहीं आउंदी। कोई थोड़ा जिहा अंतरमुखी होंदा है तो कविता गीत संगीत उसदे पल्ले पै जांदा है। जो कवि है ये थोड़ा जिहा अंतरमुखी होया है, मन दे एक निक्के जिहा कोने विच थोड़ा जिहा इसने प्रवेश कीता है, एक कवि बन गया है। मन दे दूसरे कोने विच किसी ने थोड़ा जिहा प्रवेश कीता है, एक संगीतकार बन गया है, दार्शनिक हो गया है, फिलोसफर हो गया है, चिंतक हो गया है। पर मन इतना महान है और इस दे अंदर जिना जिना ने भी जात मारी है उते कहंदे ने कि मन दा पारावार नहीं, अथा दैवी गुणा नाल ए भरे होया है। कहंदे ने पश्चिम दे मनोविज्ञानक ए आखदे ने कि भारती ऋषि मुनि गलत कहंदे ने कि मन विच राम है कतई नहीं, मन विच काम है। भारती ऋषि मुनि जो ये कहंदे ने मन विच अथा खजाने ने, वो कहंदे नहीं मन विच सिवाय कंगालता तो साडे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। दरअसल पश्चिम ते पूरब दा जड़ा मनोविज्ञान है उदे आधार अलग अलग ने। पागल बंदिया नू आधार बना के पश्चिम दा मनोविज्ञान खोज करदा रहा कि पागल क्यों हो जांदे ने, पागलां नू आधार बना के ए पागल क्यों हो जांदे ने इस दी खोज ओ मन विचों करदे रहे। पर कोई आनंदित हो गया है, समाधि लीन हो गया है, परम प्रसन्न हो गया है, ऐसा क्यों हो गया है, ये परम आनंदित क्यों हो गया है, ये परम सुख चैन दी दौलत नाल माला माल किस तरह हो गया है। इस तरह दे तंदुरुस्त बंदे नूं आधार बना के भारत दे ऋषि मुनि मन दी खोज कर दे रहे ने। तो एक ने तंदुरुस्त नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, एक ने बीमार नूं आधार बना के मन दी खोज की थी, तो फिर खोज दे जमीन आसमान दा अंतरा ते होना सी, ओ होया। पश्चिम दा मनोचिंतक कहिंदा है मन विच वासना है, मन विच अहंकार है, मन विच लोभ है। जितना गहरे जांदे हां इस तो बिना होर मन विच कुछ भी नहीं है, लोभ ही लोभ है, अहंकार ही अहंकार है और मन काम नाल ही भरे हुए है। आम दृष्टिकोण नाल जे ऐसा देखिए ते कुछ सच्चाई भी प्रतीत आउंदी है कि थोड़ा जिहा मन विच जात मारी है ते अंदर काम है, ते अंदर लोभ है, ते अंदर अहंकार, यही फुरने पे चलदे ने। पर ए उपर उपर ने, तह विच नहीं, सता विच नहीं। लहरां भी सागर दे उपर उपर ने, तह विच नहीं, गहराइयां विच नहीं। सारी भज दौड़ भी सागर दे उपर उपर है, थल्ले ते सुकून है, शांति है, ठहराव है, एकाग्रता है। सागर दी उछली हुई अवस्था नू ही तूफान कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही काम कहंदे ने, मन दी उछली हुई अवस्था नू ही लोभ कहंदे ने और मन दी उछली हुई अवस्था नू ही अहंकार कहंदे ने। भगत नामदेव जी महाराज साफ कह रहे ने, लोभ लहर अत नीझर बाजे काया डूबे केसव। ए केसव, ए प्रभु, बड़िया लोभ दिया छल्ला ने, बड़िया लोभ दिया उचिया उचिया लहरा ने, मैं ते डूब रहा, तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा।
तो सागर दी उछली हुई अवस्था नू तूफान कहंदे ने। मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है, ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नू देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ, ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो पश्चिम दा मनोचिंतक एक कहिंदा रहा कि मन दी ते सिवाय काम तो और कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो और कुछ नहीं। पागल बंदियां नू आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है। पागल क्यों हो जांदे ने, तवाजन डावा डोल क्यों हो जांदा है, ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने। अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है, असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नु पागल बना देंदा है। हां जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन बंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ा आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध। यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नू आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां सी सिपियां संख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोज दिया उसनु नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह, तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है,
ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਬਾਹਰੋਂ ਇਤਨੀ ਜੁਟਾ ਲਵੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ। ਸਾਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਗਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਸਦੇ ਘਰ ਦੌਲਤ ਕਿਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਕਿਤਨੇ ਹੋਵਨ। ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਇਤਨਾ ਇਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਨੇ ਤੇ ਰਤਨ ਹੋਵਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਉਹ ਕੀੜੀ ਜਿਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਉਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀੜੀ ਦੀ ਥੱਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ।

और कोई ना कोई बिंदु अहंकार का बनिया रहिंदा है, समस्या। लेकिन इस अवस्था ते पहुंच के मन दी दुनिया तो पार हो के कोई समस्या नहीं, समाधि ही समाधि। हुण जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, सब कबूल। दरिया दे बहाव नाल वो अपने आप नूं बहा लैंदा है, विरोधता नहीं करदा। ए दरिया, जिस पासे हुण तू लै जाना है मैं उसे पासे ही जाना है। आखिर विरोधी दिशा दिच तैर के मनुख लंबा नहीं तैर सकेगा, आखिर टूटेगा, थकेगा। और दुनिया दिच ऐसा ही हो रहा है, बहाव दे नाल अपने आप नूं बहा लेना। किसे नूं कहंदे ने, रब दी रजा दे इसने अपने आप नूं जोड़ लिया। जिधर रब रजा है वैण ते दाऊं गाऊं करे। जिस पासे हुण रब दी रजा है बस उस वास्ते ही उसे पासे ही जिंदगी नूं तोड़ दिता है, जिंदगी नूं छोड़ दिता है, ईश्वर दे आसरे ते, प्रभु दे आसरे ते। इस तरह दे बंदे दी जिंदगी च कोई भी समस्या नहीं, समाधि ही समाधि है। मन दी खोज करदिया करदिया गीत संगीत प्राप्त होए, रिधियां सिद्धियां प्राप्त होएगा। खोजदियां खोजदियां मन तो पार होए तो परमात्मा मिल गया और जीवन धन धन हो गया। सतयुग तै माणियो छलियो बल बावन भायो।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है 2024 में, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है 2025 में, हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
2: So the Musia, baby. Yeah.
3: Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट

नंदलाल आप बुलंद पाया शायर ने कवि एक संगीतकार नो सच्ची रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जिस दिन उदी संगीत दी धुन नो कोई संगीतकार दाद देन लग पाए ते सिर हिला के सुनन लग पाए मस्त हो जाए संगीतकार नो रूहानी खुशी मिलती है। आम बंदिया नू रस आ रहा है सिरे हिला रहे तो ठीक है स्वाद पे है संगीत का रस पर जब कोई चोटी का संगीतकार किसी भी संगीत की धुन नू दाद देंदा है गायक नू सच्ची रूहानी खुशी मिल जाती। कोई महान कवि किसी कवि की रचना नू जब दाद देंदा है तो कवि नू रूहानी खुशी मिलती है। आम बंदे सिर हिला के सुन रहे हैं ठीक रस ते आएगा कविता च पर जब कोई कवि भी रस लैन लग पवे कविता नू सुन के ते दाद भी देवे फिर कवि नू रूहानी खुशी मिलती क्योंकि एक जानकार मनुख ने दाद दिती है जो संगीत नू समझदा है वो दाद दे रहा है जो इल्मे शायरी दा माहिरीन है वो दाद दे रहा है। शायर इस वास्ते नंदलाल को लाया है क्योंकि नंदलाल शायर ने कवि है। भाई साहब नू कहिंदे ने एक एक नज़म तुहानू सरवण कराणी पहले मजनू दे संबंध विच फिर एक नज़म लैला दे संबंध पूरी वड्डी किताब लिखी सी पर सियाणे मनुख जिवें एक चावल दे दाणे नू देख के सारी देखची दा अंदाजा ला लैंदे ने उह भी सुणाउण वाला भी सियाणा सी एक एक नज़म सुणाउण दा उसने कहा भाई साहब सुणन नू राजी हो। पहली नज़म विच उहने दस्सिया मजनू कित्थों आया ते किस तरह प्रेम विच पै गया। इस नज़म नू उसने तरन्नुम दे सुनाया गा के लयबद्ध हो के भाई साहब जुड़ गए। फिर वो शायर कहिंदा हुण मैं तुहानू लैला दे संबंध विच एक नज़म सुनाण लगा। हुण भाई साहब हथ नाल रोकदे ने गला भरे होया जबान नाल उसनू नहीं रोक सकते हथ नाल रोकदे ने। बाद विच जो कुछ भाई साहब ने लिखे है वो तुसी सुन लो। भाई साहब कहिंदे ने मगो अजहाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया नंद लाल दे पागल दिल नो लैला दा किस्सा ना सुन लैला दी नज़म ना सुन मगो अजहाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साद। मैं ते मजनू दा किस्सा सुन के अपने होश गवा बैठा पर जे हुण तू लैला दा किस्सा सुनाया मैं अपने प्राण गवा बैठा ना सुना मैं नहीं सुन सकता मेरे कोल ताब नहीं है मेरे कोल समर्था नहीं है मैं नहीं सुन सकता मैं ते अपने होश गवा बैठा। ऐसा त्यार किस्सा ते उसने नज़म ते मजनू दे संबंध सुनाई सुरत जुड़ गई परमात्मा भाई साहब भाई नंद लाल प्रेम दी गल चाहे किसे दे संबंध च भी कोई सुनावे पर सुनन वाले दा उस दे नाल जुड़ना हो जांदा जिस नाल उसका प्रेम हो भावे उसने ते मजनू दी गल सुनाई भाई साहब जुड़ गए प्रभु नाल। और कहिंदे ने मगो अजहाले लैली ना सुना कितना कोमल हिरदा होवेगा कितना प्रेम नाल भेजिया होया हिरदा होवेगा गल मजनू दी सुनी है जुण गए परमात्मा नाल परमात्मा दी बाणी सुन के भी मनुख परमात्मा नाल ना जुड़े तो हिरदे कोरे नहीं ते होर की नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ

ईशान का मुंडन आम चल पाया सी। पानी सब तो प्रथम उसने ईशान का मुंडन उना ब्राह्मण जिना ब्राह्मणा ने राजे जनमेजे दी महाराणी दी हस के बेपति की थी। ओ किधरे जोर दी हवा नाल नगन होई ते सारे दे सारे हस पे। जनमेजे ने इना दे सिर मुन दिते, कुछ कतल की थे बुथेरिया दे सिर मुने। इस तरह सिर नो मुन्ना मुंडन करना एक बहुत वड्डी सजा सी, बहुत वड्डी सजा। उस वक्त जनमेजे ने एक सजा ही दी। कलगीधर पिता ने सारा प्रसंग दसम ग्रंथ विच लिखे है। प्रथम बांध के सबके मूड मुड़ाए, उनर ए डुआ शीस तांके लगाए। इन्हां ब्राह्मणा नूं बन के उन्हां दे शीस मुन दिते, मुंडन कर दिता। तो उन्होंने घोर बेअदबी की थी, फिर इन्हों छोड़ दिता। इतनी वड्डी सजा देती, जिन्होंने छोटी सजा दी उन्होंने तो सजाए मौत दी, पर जिन्होंने वड्डी सजाए दी उन्होंने मुंडन किया, जीवद ही मार दिता। ये ब्राह्मण जिधर जिधर गए लोगों ने पूछा, थोड़ा जोड़ा, थोड़ा दाड़ा, थोड़े केस। तो इन्होंने यह किया, पिता गुजर गया, किसी ने कहा मां गुजर गई। हां ऐसा करना पै, ये सोग धारण करना पै। अज भी बिल्कुल सफा चट मुंडन करा के कोई बाहर आ गया बाजार विच, ऐसा समझा जाता है या मां गुजर गई है या पिता गुजर गया है। ये मुंडन सोग की निशानी, दुख की निशानी, मौत का प्रतीक सी। सहजे सहजे जब आध्यात्मिक जीवन रहा ना तो मुंडन आम हो गया। जनमेजे ने कुछ ब्राह्मणा का मुंडन किया सी, इना करके इंज कह लो सारे देश का मुंडन हो गया। केस एक ऐसी सुरक्षा ने, जब कोई नाम जपता है बाणी पढ़ता है तो मस्तक दे शक्ति जमा होती है, रस जमा होता है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए। केस मदद कर दे, केसां दे चों भी निकले ना, जल्दी ना खारिज हो तो दस्तार मदद कर दी है। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत दे सिरमौर ने ऋषि मुनिया का रूप ने, मुखड़े का दाड़ा प्रकृति का दिता हुआ पुरश नू शिंगार है। जैसे असी देखते हैं शेरनी दे गल दे, ए लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन दे जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी इतनी खूबसूरत नहीं। ए लंबे लंबे पंख प्रकृति का दिता हुआ शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा तोता कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत दा दिता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरश की शिंगार विच रुचि नहीं रही, इसत्री की ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरश का मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या। तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना शिंगारना आरंभ किया। इसनों ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते हैं। खैर दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरश अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते हैं। तो शीश दे ए केस रहतां विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनिया की रूपरेखा। कड़ा सर्वलो हर वक्त बदन नूं छूंदा रहे,

0: ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੰਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਲੀਨ ਰੂਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਯੋਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਤਾਂਤਰਿਕ, ਇਸਦਾ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਵਜਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਕੜੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੁਮਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਕੜੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਕੜਾ ਦਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਦਾਇਆ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾ ਹੋ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵਣ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਛਹਿਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ ਔਰ ਇਸਦਾ ਇਤਨਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਜੈਸਾ ਹੀ ਕਛਹਿਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋੜ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਘਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਘੇ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕੇਸ ਸੰਵਰ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਰਪਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਔਰ ਕੁਛ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਜੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਦਮ ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। जन्म देने में बर्बादियां में। अगर सिपाही संत पहले है तो उदे कदमां नाल तामीर होंगी है मनुखता दी, उदे कदमां नाल धरती जरखैज होंगी है। ठीक आख्या है चीनी संत कन्फ्यूशियस ने कि जिथे रुक जाते ने सैनिक दे पैर सिपाही दे पैर उत्थे कंडे ही कंडे रह जाते हैं, उजाड़ ही उजाड़ रह जाता है, बर्बादियां ही बर्बादियां जन्म लेंदियां ने। पर जिथे वो सिपाही जो संत पहले है उदे कदमां दे राही तामीर होंगी, उदे हत्थां दे राही उसारी आउंदी है और धरती हरी भरी आउंदी है, मनुख नूं इंसाफ मिलदा है, कमजोर दी रक्षा आउंदी है और जालम दे पैर रुकदे ने। तो इस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नूं सिपाही बनाया और सिपाही दा प्रतीक है शस्त्र, तो शस्त्र पहना दिता। किरपान इस वास्ते पहननी है कि छोटी जी किरपान नाल कोई मैदानी जंग दे च लड़ना नहीं, पर यह छोटी जी किरपान एहसास करांदी रहे कि असी सिपाही हां सिपाही हां, और इस तरह दा अंदर वीर रस बनिया रहे तो फिर मनुख अपनी भी रक्षा कर सकदा है, कौम की भी रक्षा कर सकदा है, देश की भी रक्षा कर सकदा है, और किसी तरह का भी कोई हथियार होवे उस नाल रक्षा करेगा। लेकिन सिपाही होने का भाव तो बनिया रहे, अंदर वीर रस ते बनिया रहे, वो तो ताही हो सकता है कि हर वक्त मनुख ने कोई शस्त्र पहने होवे। तो इस तरह किरपान पहनने की धारण करने की सानू ताकीद की गई। भाई साहब भाई नंद लाल कहने निशान है सिखी ई पंज हरफ काफ के हर गिज ना वाशद ई पंज माफ कड़ाकार दो का चकंगा बिना बिना केस हेच अस ई जुमला निशान। अज देश साइंस युग दे विज्ञानिक युग दे तरक खड़ी होंदी है कि नाखून कटदे हो ये भी प्राकृतिक ने, की होया अगर केस कटे जा रहे हैं, की होया अगर केसां दा मुंडन है, आखिर नाखूनां दा भी तो मुंडन करदे ही हैं। नाखूनां दा वो हिस्सा कटिया जांदा है जो मुर्गा ने मर चुके ने, जिवें घर विच गया है चलाना कर गया है तो मुर्दे नूं घर विच ते नहीं रखते, और घर विच रखांगे तो बदबू, घर विच रखांगे तो गलाजत, घर विच रखांगे तो सारा घर मरगट बनेगा। इस वास्ते मुर्दे नूं मरगट घाट ले जांदे हैं और जला के खाक कर दें। नाखून जो मुर्दा हो जाते ने मैल नाल भर जाते हैं और बीमारियां दे ओ जन्मदाते बनते हैं। जिंदा नाखून जो मांस के नाल जुड़े हुए है जिंदा है, उसनू कटांगे तो खून निकलेगा, उसनू कटांगे तो पीड़ होगी, और जो अगे बढ़ चुके है मैल नाल भर गए इतने मुर्दा है। इस नाखून नू कटना मैल नू कटना है, परे सुटना है। प्रकृति ने जब उसनू खत्म कर दिता है मुर्दा कर दिता है तो मुर्दा शरीर तो अंग तो एक पासे करना पड़ेगा, जैसे घर के वेड़े तो मुर्दे नूं एक पासे करते हैं। हां केस भी कुछ मरदे हैं, पर सानू किस तरह पता चलेगा किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं, दाड़े दे किहड़े वाल मुर्दा हो चुके हैं, सिर दे किहड़े केस मुर्दा हो चुके हैं, कि साडे हत्थां नूं नहीं पता चलदा, कंगे नूं पता चलदा। जैसे जैसे असीं कंगा फेरदे हां मुर्दा केस झड़ जांदे निकल जांदे, जैसे नाखून रोज वधदे ने रोज नवे केस पैदा हुंदे ने और पुराने झड़दे ने। इह केसां दा जन्म ते मरण जीवन भर चलदा रहिंदा है। कुछ ते सियाणे कहिंदे ने कि मुर्दे देवी केस वद्दे ने और नाखून वद्दे ने। खैर जो कुछ भी है, जो केस मुर्दा ने कंगे दे राही झड़ जाते निकल जाते हैं, और जो जिंदा ने ओ सवर जाते हैं सवर जाते। प्रकृति केसा नू एक सीमा तक रखती है, चाहे वह मुखड़े देने चाहे वह सिर देने। असी देखते हैं जो केसा का मुंडन करते हैं आखिरी दवा तक केस उन्होंने वधते ने, दाड़ा मुने है चौथे पंजवें दिन फिर दाड़ा आ गया, फिर मुने है चौथे पंजवें दिन फिर आ गया। लेकिन इस मुंडन नू इस मुंडन नू कोई छोड़ देवे तो दाड़ी एक सीमा ते आके रुक जाती है और जीवन भर उथे जो है रुकी रहती है, उस तो अगे जो है नहीं जाती। केस भावे नवे जन्म दे रहे ने, मुर्दा झड़ते रहते ने, लेकिन लंबाई एक सीमा तक ही आखिरी दमा तक जो है रहती है। प्रकृति ने इस तरह नाप तोल के हर एक जो है केस देते हुए ने। केसा का मुंडन प्रकृति नाल जंग है और इस जंग में हार ही होती है, जित नहीं आती, क्योंकि आखिरी दमा तक केस निकलते रहते हैं वधते रहते। जैसे जैसे सिर दे आत्म ज्योति खत्म होती गई, नाम अभ्यास खत्म होता गया, केसा की कदर भी घटती गई। अज भी असी देखते हैं कि रामलीला राम पेश करना है स्टेज से, विश्वामित्र नु पेश करना है, विशिष्ट जी नु पेश करना है, तो जोड़े भी चाहिए ने, गाड़ियां भी चाहिए ने, और अक्सर बाजार तो नकली जोड़े नकली दाड़ियां खरीद के लिया जाए। असी इस गल का माण कर सकते हैं कि साडे सिर ते जोड़ा असली है राम वर्गा, साडे मुखड़े ते दाड़ा असली है विश्वामित्र जैसा, विशिष्ट जैसा, अवतारां दा स्वरूप, ऋषि मुनिया दा स्वरूप। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साड़ी झोली दे पाया है। हाँ जब कोई ऋषि होण तो मुनि होण तो संत होण तो थले जांदा है, मनुखता तो थले गिरदा है, तो जब थले ही गिर गया तो फिर हुण केसां दी लोड़ भी नहीं। अज सारी दुनिया विच केसां दा मुंडन है। थोड़ी जिहा कौम जिसनों असीं सिख कहिंदे आ, केस इस कोली दिखाई देंदे ने, या कुछ थोड़ा जिहा साधु समाज। वैसे बगौर मुताला करिए मोहम्मद साहब केसाधारी सन, हजरत ईसा केसाधारी सन, और इसे तरीके नाल भारत दे तमाम ऋषि मुनि अवतारी पुरुष केसाधारी सन। और सिर्फ केसाधारी नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी सन, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हाथ दे चाहे, और इसे तरीके नाल परशुराम कोल कुलाड़ा है बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है, और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष सुधारी ने केसाधारी ने। जैसे जैसे पैगंबरां नूं अवतारां नूं मनना घटता गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटता गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख दा अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार दा सत्कार घटदा है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा आदर नहीं रहा उस दे पिछे चलण दी लोड़ की है। हाँ कदी कदी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर से रख के नकली दाड़ा मुखड़े से लगा के इस तरह नकल पेश कर देती, लेकिन ये पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इना अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन, और जे इना दी उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है। अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए। गाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो तेज से पेश करना चाहिए। ऋषि मुनिया का स्वरूप, पैगंबरां का स्वरूप, गुरु अवतारां का स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया और प्रदान करके साफ आग्रता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दीए तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है माण नाल सतगुरु। इत्थे तक कहिंदे ने तिन ही की कृपा के सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोड़ परे हैं। किसी नू शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है। तो महाराज कहने या में रंच न मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे ते मेरे कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया मन करके तन करके। जब वाकई बाणी हिरदे प्रवेश कर जाए, रोम रोम दे प्रवेश कर जाए, तो हिरदा गुरु वर्गा बन गया और तन देते जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नू मान नाल कहना पैंदा है कि मेरा अपना रूप, ते मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे का सत्कार करना पैंदा है। खालसे नू सज्जन कहिंदे ने, मित्र कहिंदे ने, गुरपूरा करके कहिंदे ने और खालसे नू अपना स्वरूप करके जो है बयान करदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ये अमर देन, ये अदुत्ती देन, सहजे सहजे अज जगत के चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सहजे सहजे सतगुरु की इस दात नू धारण करने का भी माहौल बनना आरंभ होया है। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस देन नू अमर देन समझ के, प्रकृति की देन समझ के, परमात्मा की देन समझ के हर मनुख कबूल करेगा, अपनाएगा। अरदास है उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ये दात, गुरु नानक की ये बख्शिश झोली दे संभाल के रख सकी, ताकि गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े ते माण कर सकन और माण नाल कह सकन खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मैं खालसे देखा खालसा मेरे विच है, हुण कोई भेद नहीं रहा और रंच मात्र भी भेद नहीं रहा। या में रंच न मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साहिब।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण @604581-1900।